0: ये खबरें एनएच केवल जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। अमरीकी और ईरानी मुजाकरात कार सालिसों के साथ बातचीत के लिए कतर में हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि दोनों फरीक बिलमुशाफा बातचीत करेंगे। एक अमरीकी अहदेदार ने एनएचके को बताया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात करेंगे। अहदेदार ने बताया कि अमरीकी और ईरानी वफूद बुध को कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग बातचीत करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि उनके मुल्क का वफद कतरी सालिसों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि वो मुफाहमत की याददाश्त के कुछ हिस्सों बशमूल ईरान के मुंजमद असासों के इजरा पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर भी जोर दिया कि अगले चंद दिनों में अमरीकी फरीक के साथ किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के हवाले से दबाव बढ़ाने के एक हिस्से के तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में पैदा होने वाले कुछ बच्चों के लिए खुदकार पैदाइशी हक के शहरियत खत्म करने की कोशिश की थी। ताहम अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया है। अदालत ने मंगल के रोज अपने फैसले में लिखा कि शहरियत के हक का इतलाक अमरीका में पैदा होने वाले तमाम बच्चों पर यकसां होता है, चाहे उनके वालदैन मुल्क में गैर कानूनी तौर पर या आर्जी तौर पर ही मौजूद क्यों ना हों। जापान की वजारत माहौलियात ने रीछों की तादाद का ज्यादा दुरुस्त अंदाजा लगाने के लिए खुदकार कैमरों का इस्तेमाल करते हुए यकसां सर्वे का तरीका शुरू किया है। ये इकदाम इस जानवर के हमलों से हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद के तनाजुर में सामने आया है। अब तक मुख्तलिफ खित्तों में सर्वे के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं, जिनमें फंदों में पाए जाने वाले बालों का तजिया करना और शिकारियों से पहाड़ों में रीछ के देखे जाने के बारे में पूछना शामिल हैं। सर्वे के औकात और तवातर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करते थे। वजारत ने मंगल के रोज शुमाली जापान के तोहोक खित्ते के तमाम 6 प्रीफेक्चरों आओमोरी, अकीता, इवाते, यामागाता, मियागी, फुकुशिमा और निगाता के कुछ हिस्सों में कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वजारत के अहलकारों को सेंदाई शहर के एक जंगल में एक दरख्त पर कैमरा लगाते और उसके सेंसरों को एडजस्ट करते हुए देखा गया। उन्होंने शहद भी चारे के तौर पर वहां रखा। एशियाई काले रीछों की तादाद का अंदाजा उन्हें गिनकर लगाया जाएगा, जिनकी शनाख्त कैमरों के जरिए ली गई फुटेज में उनके सीने के मुनफरिद निशानात से की जा सकती है। रवा माली साल में यह सर्वे अक्टूबर के आसपास तक जारी रहेगा। वजारत ने रीछ के मस्कनों के मुताबिक सर्वे के इलाकों को 6 ब्लॉक्स में तकसीम किया है। जंगलात और शहरी इलाकों में कुल तकरीबन 800 कैमरे लगाए जाएंगे। वजारत अगले साल मार्च में नतायज जारी करने का इरादा रखती है। मंसूबे के मुताबिक आइंदा 4 वर्षों में मुल्क भर के उन तमाम इलाकों का सर्वे किया जाएगा जहां रीछ पाए जाते हैं। वजारत के एक अहलकार ने कहा कि वो रीछ की आबादी का दुरुस्त तयन करने और इस सर्वे के नतायज का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला करने के लिए पुरुम्मीद हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में कितने रीछों को पकड़ने की जरूरत है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापानी वजीर आजम ताकायची सनाए ने आज बुध के रोज से नई दिल्ली का 3 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। वो जुमेरात को अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। और जापान में तवज्जो से देखे जाने वाले एक कारोबारी सर्वे से पता चलता है कि बड़े मसनूआत साजों के कारोबारी एतमाद में मुसलसल 5वें सेमाही में बेहतरी आई है। ये बेहतरी तजियाकारों के इन खदशात के बावजूद हुई है कि मशरक़ वस्ता का तनाज़ा कारोबारी रुझान को ख़राब कर देगा। और जापान ने रवानगी टैक्स 1000 येन से बढ़ाकर 3000 येन या तकरीबन $18 कर दिया है, जो बुध से नाफिजुल अमल हो गया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 2 जुलाई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों के एक सप्ताह बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोद्रिगेज ने बुधवार को बताया कि मृतकों की संख्या 2295 हो गई है। 24 जून को आए 7 से अधिक की तीव्रता के 2 भूकंपों के बाद से बचाव अभियान जारी है। वेनेजुएला सरकार ने बुधवार से 7 दिनों के शोक की घोषणा की है। इस बीच वेनेजुएला और अन्य देशों के बचावकर्मी ध्वस्त इमारतों में दबे लोगों की लगातार तलाश कर रहे हैं। स्पेन के अखबार एल पाइस ने खबर दी है कि लागवायरा बंदरगाह पर बड़ी संख्या में लोग अपने प्रियजनों की तलाश में जमा हो रहे हैं, जहां सैकड़ों शवों की पहचान की जानी बाकी है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के अनुसार आपदा के एक सप्ताह बाद भी जीवित बचे कई लोगों को भोजन पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और शिविर तैयार करने जैसी सहायता प्रदान करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। जापान में जमीन की औसत कीमतों में लगातार 5वें साल वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों की आमद से लाभान्वित क्षेत्रों में ये कीमतें उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं। 2026 में हुई वृद्धि 16 वर्षों में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय कर एजेंसी ने बुधवार को नए आंकड़े जारी किए, जिनका उपयोग विरासत और उपहार करों की गणना के लिए किया जाता है। एजेंसी के अनुसार 1 जनवरी तक लगभग 3,07,000 स्थानों पर प्रमुख सड़कों के किनारे जमीन की औसत कीमत 1 साल पहले की तुलना में 2.9% अधिक थी। जापान के 47 प्रीफेक्चरों में से 2/3 से अधिक में दाम बढ़े। टोक्यो में सर्वाधिक 9.4% का उछाल आया, जिसके बाद ओकिनावा में 6.6% और ओसाका में 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई। आवास की ज़बरदस्त मांग, पर्यटकों की बढ़ती संख्या और कारोबारी इलाकों में पुनर्विकास परियोजनाएं इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण रहे। मध्यवर्ती टोक्यो की गिंजा चुओ सड़क पर लगातार 41वें वर्ष जमीन के दाम देश में सर्वाधिक रहे। यहां प्रति वर्ग मीटर की कीमत अब तक की सर्वाधिक 5,33.6 लाख येन यानी लगभग $3,30,000 पर पहुंच गई है। एक विशेषज्ञ के अनुसार विदेशी पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या और इसे 2030 तक प्रतिवर्ष 6 करोड़ तक बढ़ाने के सरकारी लक्ष्य को देखते हुए व्यावसायिक भूमि की मांग मजबूत बनी रहेगी। एक विशेषज्ञ का कहना है कि पिछले सप्ताह उत्तरी जापान के निकट समुद्र में आए एक शक्तिशाली भूकंप से पहले स्लो स्लिप इवेंट नामक घटनाएं सामने आई थीं। ये एक प्रकार की भूकंपीय गतिविधियां हैं जिनमें विवर्तनिक प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं। 25 जून को इवाते प्रीफेक्चर के निकट समुद्र में 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। पड़ोसी प्रीफेक्चर आओमोरी के क्षेत्र में जापान के 0 से 7 के भूकंपीय पैमाने पर इसकी तीव्रता 6 उच्च दर्ज की गई थी। बुधवार रात इवाते के तट पर भी 6 की तीव्रता का भूकंप आया। आओमोरी और इवाते प्रीफेक्चरों में 4 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया। टोक्यो विश्वविद्यालय में भूकंप अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर उचिदा नाओकी का मानना है कि 25 जून का भूकंप स्लो स्लिप इवेंट से प्रभावित था, जिनमें महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बीच की सीमा धीरे धीरे खिसकती है। उनके विश्लेषण से पता चला है कि अप्रैल में इवाते तट सहित सानरिकू क्षेत्र के निकट समुद्र में आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप के परिणाम स्वरूप स्लो स्लिप इवेंट सक्रिय रूप से जारी हैं। इन घटनाओं के कारण आसपास की प्लेट की सीमाओं पर तनाव जमा हो जाता है, इसलिए उचिदा ने इस संभावना की ओर इशारा किया है कि इन घटनाओं के कारण ही शायद पिछले सप्ताह का भूकंप आया। विशेषज्ञ ने इस संभावना पर ध्यान दिया है कि तोहोकू क्षेत्र के निकट
समुद्र में स्लो स्लिप इवेंट का दायरा बढ़ रहा है जो 1994 के अपतटीय सानरिकू भूकंप के केंद्र के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों तक फैल सकता है। उन्होंने केंद्र पर इन घटनाओं के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने अपने उक्रेनी समकक्ष आंद्री सिबिहा से कहा है कि जापान उक्रेन के साथ खड़े रहने के अपने दृढ़ संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने टोक्यो दौरे पर आए सिबिहा से कहा कि उक्रेन में न्याय संगत और स्थायी शांति हासिल करने के लिए जापान कीव का समर्थन करना जारी रखेगा और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को बनाए रखेगा। दोनों ने बुधवार शाम को टोक्यो के ईकुरा गेस्ट हाउस में बैठक के बाद रात्रि भोज किया। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। उक्रेन पर रूसी आक्रमण के संबंध में मोतेगी ने कहा कि जापान यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। जापानी विदेश मंत्री ने उक्रेन में पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण के लिए सरकारी निजी भागीदारी सहायता पर काम जारी रखने की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रूस के हमलों से क्षतिग्रस्त हुए विश्व धरोहर स्थल कीव, पेचेर्स्क, लावरा, मठ के जीर्णोद्धार के लिए जापान यूनेस्को के माध्यम से सहायता प्रदान करेगा। बाद में दोनों मंत्रियों ने युवा सरकारी अधिकारियों के प्रोत्साहन के लिए अनुदान सहायता परियोजना से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया। जापान सरकार का कहना है कि उसने ईरान संघर्ष के कारण कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर काबू पाने के लिए मई में ईंधन सब्सिडी पर लगभग 290 अरब येन यानी लगभग 1.8 अरब डॉलर खर्च किए। इनमें सामान्य पेट्रोल के लिए तेल थोक विक्रेताओं को दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। इसका उद्देश्य पेट्रोल पंप पर देशव्यापी औसत कीमत को लगभग 170 येन प्रति लीटर यानी 1 डॉलर से थोड़ा अधिक पर बनाए रखना है। डीजल, भारी तेल और मिट्टी के तेल के लिए भी पेट्रोल के बराबर सब्सिडी दी जाती है, जबकि जेट ईंधन पर पेट्रोल के मुकाबले 40% की सब्सिडी दी जा रही है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दोउ देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: नागानो कैसा रहा?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: शाशिन वो ताकुसान तोरिमाशिता।
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: सोरे करा ओसोबा मो तबेमाशिता।
1: उसके बाद सोबा भी खाया।
3: तोतेमो ओइशिकत्ता देसु।
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: सो देसु का?
1: अच्छा।
2: योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्स देशिता।
1: नागानो के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: तनोशी ल्योको देशिता ने।
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: तानोशिकत्ता देसु
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: तानोशी
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तानोशी देसु
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तानोशिकत्ता देसु
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: たのしかったです。
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: おいしかったです。
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: おいしいです
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: よかったです
1: भी है, जो
5: いいです
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देश का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: शिनसेत्सु देसु। शिनसेत्सु देसु
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: शिनसेत्सु देशता।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: तानोशी ल्योको देसु
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: たのしい旅行でした。
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्ता, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्ता देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है।

0: पुरुष ने आगे कहा,
1: तोतेमो निगियाका देश्ता,
2: बहुत चहल पहल थी।
3: तोतेमो
0: का अर्थ है बहुत,
3: निगियाका देश्ता
0: है ना विशेषण,
3: निगियाका ना
0: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
2: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
3: ओसाका वा दो देश्ता का? योकात्ता देस। とてもにぎやかでした。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
3: सुबाराशी, सुबाराशी।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारूजी की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
4: ओकाएरी नासाई,
3: ओकाएरी नासाई
0: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
3: ओकाएरी,
0: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं, और इसका बहुत औपचारिक रूप है
3: ओकाएरी नासाइमासे,
0: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: ओकाएरी नासाइ, नागानो वा दोउ देशिता का?
5: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか。よかったですね。
5: 長野の人はとても親切でした。
6: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
2: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मियाँ के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मियाँ नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
0: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं, जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
2: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
0: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
2: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 2 जुलाई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों के एक सप्ताह बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोड्रिगेज ने बुधवार को बताया कि मृतकों की संख्या 2295 हो गई है। 24 जून को आए 7 से अधिक की तीव्रता के 2 भूकंपों के बाद से बचाव अभियान जारी है। वेनेजुएला सरकार ने बुधवार से 7 दिनों के शोक की घोषणा की है। इस बीच वेनेजुएला और अन्य देशों के बचावकर्मी ध्वस्त इमारतों में दबे लोगों की लगातार तलाश कर रहे हैं। स्पेन के अखबार एल पाइस ने खबर दी है कि लागवायरा बंदरगाह पर बड़ी संख्या में लोग अपने प्रियजनों की तलाश में जमा हो रहे हैं, जहां सैकड़ों शवों की पहचान की जानी बाकी है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के अनुसार आपदा के एक सप्ताह बाद भी जीवित बचे कई लोगों को भोजन पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और शिविर तैयार करने जैसी सहायता प्रदान करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। जापान में जमीन की औसत कीमतों में लगातार 5वें साल वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों की आमद से लाभान्वित क्षेत्रों में ये कीमतें उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं। 2026 में हुई वृद्धि 16 वर्षों में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय कर एजेंसी ने बुधवार को नए आंकड़े जारी किए, जिनका उपयोग विरासत और उपहार करों की गणना के लिए किया जाता है। एजेंसी के अनुसार 1 जनवरी तक लगभग 3,07,000 स्थानों पर प्रमुख सड़कों के किनारे जमीन की औसत कीमत एक साल पहले की तुलना में 2.9% अधिक थी। जापान के 47 प्रीफेक्चरों में से 2/3 से अधिक में दाम बढ़े। टोक्यो में सर्वाधिक 9.4% का उछाल आया, जिसके बाद ओकिनावा में 6.6% और ओसाका में 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई। आवास की ज़बरदस्त मांग, पर्यटकों की बढ़ती संख्या और कारोबारी इलाकों में पुनर्विकास परियोजनाएं इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण रहे। मध्यवर्ती टोक्यो की गिंजा चुओ सड़क पर लगातार 41वें वर्ष जमीन के दाम देश में सर्वाधिक रहे। यहां प्रति वर्ग मीटर की कीमत अब तक की सर्वाधिक 5,33.6 लाख येन यानी लगभग $3,30,000 पर पहुंच गई है। एक विशेषज्ञ के अनुसार विदेशी पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या और इसे 2030 तक प्रतिवर्ष 6 करोड़ तक बढ़ाने के सरकारी लक्ष्य को देखते हुए व्यावसायिक भूमि की मांग मजबूत बनी रहेगी। एक विशेषज्ञ का कहना है कि पिछले सप्ताह उत्तरी जापान के निकट समुद्र में आए एक शक्तिशाली भूकंप से पहले स्लो स्लिप इवेंट नामक घटनाएं सामने आई थीं। ये एक प्रकार की भूकंपीय गतिविधियां हैं जिनमें विवर्तनिक प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं। 25 जून को इवाते प्रीफेक्चर के निकट समुद्र में 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। पड़ोसी प्रीफेक्चर आओमोरी के क्षेत्र में जापान के 0 से 7 के भूकंपीय पैमाने पर इसकी तीव्रता 6 उच्च दर्ज की गई थी। बुधवार रात इवाते के तट पर भी 6 की तीव्रता का भूकंप आया। आओमोरी और इवाते प्रीफेक्चरों में 4 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया। टोक्यो विश्वविद्यालय में भूकंप अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर उचिदा नाओकी का मानना है कि 25 जून का भूकंप स्लो स्लिप इवेंट से प्रभावित था, जिनमें महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बीच की सीमा धीरे धीरे खिसकती है। उनके विश्लेषण से पता चला है कि अप्रैल में इवाते तट सहित सानरिकु क्षेत्र के निकट समुद्र में आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप के परिणाम स्वरूप स्लो स्लिप इवेंट सक्रिय रूप से जारी हैं। इन घटनाओं के कारण आसपास की प्लेट की सीमाओं पर तनाव जमा हो जाता है, इसलिए उचिदा ने इस संभावना की ओर इशारा किया है कि इन घटनाओं के कारण ही शायद पिछले सप्ताह का भूकंप आया। विशेषज्ञ ने इस संभावना पर ध्यान दिया है कि तोहोकू क्षेत्र के निकट
समुद्र में स्लो स्लिप इवेंट का दायरा बढ़ रहा है जो 1994 के अपतटीय सानरिकू भूकंप के केंद्र के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों तक फैल सकता है। उन्होंने केंद्र पर इन घटनाओं के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशीमित्सु ने अपने उक्रेनी समकक्ष आंद्री सिबिहा से कहा है कि जापान उक्रेन के साथ खड़े रहने के अपने दृढ़ संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने टोक्यो दौरे पर आए सिबिहा से कहा कि उक्रेन में न्यायसंगत और स्थायी शांति हासिल करने के लिए जापान कीव का समर्थन करना जारी रखेगा और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को बनाए रखेगा। दोनों ने बुधवार शाम को टोक्यो के ईकुरा गेस्ट हाउस में बैठक के बाद रात्रि भोज किया। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। उक्रेन पर रूसी आक्रमण के संबंध में मोतेगी ने कहा कि जापान यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। जापानी विदेश मंत्री ने उक्रेन में पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण के लिए सरकारी निजी भागीदारी सहायता पर काम जारी रखने की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रूस के हमलों से क्षतिग्रस्त हुए विश्व धरोहर स्थल कीव, पेचेर्स्क, लावरा, मठ के जीर्णोद्धार के लिए जापान यूनेस्को के माध्यम से सहायता प्रदान करेगा। बाद में दोनों मंत्रियों ने युवा सरकारी अधिकारियों के प्रोत्साहन के लिए अनुदान सहायता परियोजना से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया। जापान सरकार का कहना है कि उसने ईरान संघर्ष के कारण कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर काबू पाने के लिए मई में ईंधन सब्सिडी पर लगभग 290 अरब येन यानी लगभग 1.8 अरब डॉलर खर्च किए। इनमें सामान्य पेट्रोल के लिए तेल थोक विक्रेताओं को दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। इसका उद्देश्य पेट्रोल पंप पर देशव्यापी औसत कीमत को लगभग 170 येन प्रति लीटर यानी 1 डॉलर से थोड़ा अधिक पर बनाए रखना है। डीजल, भारी तेल और मिट्टी के तेल के लिए भी पेट्रोल के बराबर सब्सिडी दी जाती है, जबकि जेट ईंधन पर पेट्रोल के मुकाबले 40% की सब्सिडी दी जा रही है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो ताबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: 長野कैसा रहा？
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: 写真をたくさん撮りました。
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: それからおそばも食べました。
1: उसके बाद そば भी खाया।
3: とても美味しかったです。
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: そうですか。
1: अच्छा।
2: よかったですね。
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: 長野の人はとても親切でした。
1: 長野के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: 楽しい旅行でしたね。
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: すごく楽しかったです।
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: たのしかったです
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: たのしい
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: たのしい です
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: たのしかったです
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: すごく楽しかったです。
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: おいしかったです
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: おいしいです
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: よかったです
1: भी है जो
5: いいです
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देस का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: しんせつです
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: しんせつでした।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: たのしい旅行です
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: たのしい旅行でした。
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
2: ओसाका वा दो देश्टा का?
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्टा, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्तो देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्तो
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
6: तोतेमो निगियाका देश्टा,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देश्टा
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्टा का? योकात्ता देसु। とてもにぎやかでした。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी। सुबाराशी
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारू जी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओकाएरी नासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
5: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं, और इसका बहुत औपचारिक रूप है
5: ओकाएरी नासाइमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओकाएरी नासाइ, नागानो वा दो देश्टा का?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 2 जुलाई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों के एक सप्ताह बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई है। संसदीय अध्यक्ष होर्हे रोड्रिगेज ने बुधवार को बताया कि मृतकों की संख्या 2295 हो गई है। 24 जून को आए 7 से अधिक की तीव्रता के 2 भूकंपों के बाद से बचाव अभियान जारी है। वेनेजुएला सरकार ने बुधवार से 7 दिनों के शोक की घोषणा की है। इस बीच वेनेजुएला और अन्य देशों के बचावकर्मी ध्वस्त इमारतों में दबे लोगों की लगातार तलाश कर रहे हैं। स्पेन के अखबार एल पाइस ने खबर दी है कि लागवायरा बंदरगाह पर बड़ी संख्या में लोग अपने प्रियजनों की तलाश में जमा हो रहे हैं, जहां सैकड़ों शवों की पहचान की जानी बाकी है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के अनुसार आपदा के एक सप्ताह बाद भी जीवित बचे कई लोगों को भोजन पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और शिविर तैयार करने जैसी सहायता प्रदान करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। जापान में जमीन की औसत कीमतों में लगातार 5वें साल वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों की आमद से लाभान्वित क्षेत्रों में ये कीमतें उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं। 2026 में हुई वृद्धि 16 वर्षों में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय कर एजेंसी ने बुधवार को नए आंकड़े जारी किए, जिनका उपयोग विरासत और उपहार करों की गणना के लिए किया जाता है। एजेंसी के अनुसार 1 जनवरी तक लगभग 3,07,000 स्थानों पर प्रमुख सड़कों के किनारे जमीन की औसत कीमत 1 साल पहले की तुलना में 2.9% अधिक थी। जापान के 47 प्रीफेक्चरों में से 2/3 से अधिक में दाम बढ़े। टोक्यो में सर्वाधिक 9.4% का उछाल आया, जिसके बाद ओकिनावा में 6.6% और ओसाका में 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई। आवास की ज़बरदस्त मांग, पर्यटकों की बढ़ती संख्या और कारोबारी इलाकों में पुनर्विकास परियोजनाएं इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण रहे। मध्यवर्ती टोक्यो की गिंजा चुओ सड़क पर लगातार 41वें वर्ष जमीन के दाम देश में सर्वाधिक रहे। यहां प्रति वर्ग मीटर की कीमत अब तक की सर्वाधिक 5,33.6 लाख येन यानी लगभग $3,30,000 पर पहुंच गई है। एक विशेषज्ञ के अनुसार विदेशी पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या और इसे 2030 तक प्रतिवर्ष 6 करोड़ तक बढ़ाने के सरकारी लक्ष्य को देखते हुए व्यावसायिक भूमि की मांग मजबूत बनी रहेगी। एक विशेषज्ञ का कहना है कि पिछले सप्ताह उत्तरी जापान के निकट समुद्र में आए एक शक्तिशाली भूकंप से पहले स्लो स्लिप इवेंट नामक घटनाएं सामने आई थीं। ये एक प्रकार की भूकंपीय गतिविधियां हैं जिनमें विवर्तनिक प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं। 25 जून को इवाते प्रीफेक्चर के निकट समुद्र में 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। पड़ोसी प्रीफेक्चर आओमोरी के क्षेत्र में जापान के 0 से 7 के भूकंपीय पैमाने पर इसकी तीव्रता 6 उच्च दर्ज की गई थी। बुधवार रात इवाते के तट पर भी 6 की तीव्रता का भूकंप आया। आओमोरी और इवाते प्रीफेक्चरों में 4 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया। टोक्यो विश्वविद्यालय में भूकंप अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर उचिदा नाओकी का मानना है कि 25 जून का भूकंप स्लो स्लिप इवेंट से प्रभावित था, जिनमें महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बीच की सीमा धीरे धीरे खिसकती है। उनके विश्लेषण से पता चला है कि अप्रैल में इवाते तट सहित सानरिकू क्षेत्र के निकट समुद्र में आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप के परिणाम स्वरूप स्लो स्लिप इवेंट सक्रिय रूप से जारी हैं। इन घटनाओं के कारण आसपास की प्लेट की सीमाओं पर तनाव जमा हो जाता है, इसलिए उचिदा ने इस संभावना की ओर इशारा किया है कि इन घटनाओं के कारण ही शायद पिछले सप्ताह का भूकंप आया। विशेषज्ञ ने इस संभावना पर ध्यान दिया है कि तोहोकू क्षेत्र के निकट
समुद्र में स्लो स्लिप इवेंट का दायरा बढ़ रहा है जो 1994 के अपतटीय सानरिकू भूकंप के केंद्र के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों तक फैल सकता है। उन्होंने केंद्र पर इन घटनाओं के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने अपने उक्रेनी समकक्ष आंद्री सिबिहा से कहा है कि जापान उक्रेन के साथ खड़े रहने के अपने दृढ़ संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने टोक्यो दौरे पर आए सिबिहा से कहा कि उक्रेन में न्याय संगत और स्थायी शांति हासिल करने के लिए जापान कीव का समर्थन करना जारी रखेगा और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को बनाए रखेगा। दोनों ने बुधवार शाम को टोक्यो के ईकुरा गेस्ट हाउस में बैठक के बाद रात्रि भोज किया। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। उक्रेन पर रूसी आक्रमण के संबंध में मोतेगी ने कहा कि जापान यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। जापानी विदेश मंत्री ने उक्रेन में पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण के लिए सरकारी निजी भागीदारी सहायता पर काम जारी रखने की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रूस के हमलों से क्षतिग्रस्त हुए विश्व धरोहर स्थल कीव, पेचेर्स्क, लावरा, मठ के जीर्णोद्धार के लिए जापान यूनेस्को के माध्यम से सहायता प्रदान करेगा। बाद में दोनों मंत्रियों ने युवा सरकारी अधिकारियों के प्रोत्साहन के लिए अनुदान सहायता परियोजना से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया। जापान सरकार का कहना है कि उसने ईरान संघर्ष के कारण कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर काबू पाने के लिए मई में ईंधन सब्सिडी पर लगभग 290 अरब येन यानी लगभग 1.8 अरब डॉलर खर्च किए। इनमें सामान्य पेट्रोल के लिए तेल थोक विक्रेताओं को दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। इसका उद्देश्य पेट्रोल पंप पर देशव्यापी औसत कीमत को लगभग 170 येन प्रति लीटर यानी $1 से थोड़ा अधिक पर बनाए रखना है। डीजल, भारी तेल और मिट्टी के तेल के लिए भी पेट्रोल के बराबर सब्सिडी दी जाती है, जबकि जेट ईंधन पर पेट्रोल के मुकाबले 40% की सब्सिडी दी जा रही है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 18वें पाठ में किसी अनुभव के बारे में अपने विचार बताना सीखेंगे।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया नागानो में तस्वीरें खींचकर वापस आ गई है। वो हारूसान हाउस की बैठक में है और वियतनामी छात्रा ताम और रोबोट मकान मालकिन हारूजी को अपनी यात्रा के बारे में बता रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 18वें पाठ की बातचीत।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दोउ देशिता का?
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु। शाशिन वो ताकुसान तोरिमाशिता। सोरे करा ओसोबा मो ताबेमाशिता। とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने मिया से कहा,
2: お帰りなさい。
1: आओ आओ।
2: 長野はどうでしたか？
1: 長野कैसा रहा？
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: すごく楽しかったです。
1: बहुत मजा आया।
3: शाशिन वो ताकुसान तोरिमाशिता।
1: खूब तस्वीरें खींची।
3: सोरे करा ओसोबा मो ताबेमाशिता।
1: उसके बाद सोबा भी खाया।
3: तोतेमो ओइशिकत्ता देसु।
1: बहुत स्वादिष्ट था।
0: ये सुनकर हारूजी ने कहा,
2: सो देसु का?
1: अच्छा।
2: योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: मिया ने आगे कहा,
3: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्स देशिता।
1: नागानो के लोग बहुत भले थे।
0: फिर ताम ने कहा,
4: तनोशी ल्योको देशिता ने।
1: लगता है मजेदार सफर रहा।
0: दोस्तों, मिया की बात से पता चल रहा है ना कि नागानो में उसे बहुत मजा आया।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: सुगोकु तानोशिकत्ता देसु,
1: यानी बहुत मजा आया। इस वाक्य को याद करके आप किसी अनुभव के बारे में अपना विचार बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: すごく
0: का अर्थ है बहुत और
5: तानोशिकत्ता देसु
0: का मतलब है मजा आया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि अतीत के बारे में कैसे बताते हैं। तो आज हम बनाना सिखाएंगे विशेषण और संज्ञा का भूतकाल रूप।
0: तो पहले बात करते हैं ई विशेषणों की। इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
5: तानोशी
0: यानी मजेदार। तो इसका भूतकाल रूप बनाने के लिए आपको अंत का ई हटाना है और उसकी जगह लगाना है
5: कत्ता।
1: तो
5: तानोशी देसु
1: यानी मजेदार है का भूतकाल रूप होगा
5: तानोशिकत्ता देसु
1: यानी मजेदार था।
0: तो सुनिए और दोहराइए। ध्यान दीजिए कि कत्ता बोलते समय का के बाद आधे ता और पूरे ता की ध्वनि है।
5: तानोशिकत्ता देसु, सुगोकु तानोशिकत्ता देसु।
1: आज की बातचीत से ही लेते हैं कुछ और उदाहरण।
5: ओइशिकत्ता देसु
1: इसका अर्थ है स्वादिष्ट था। ये
5: ओइशी देसु
1: का भूतकाल रूप है। इसके अलावा
5: योकात्ता देसु
1: भी है, जो
5: ई देसु
1: यानी अच्छा है का भूतकाल रूप है।
0: ई देश का भूतकाल बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपवाद है, इसलिए ऐसे ही याद कर लीजिए।
1: अब बात ना विशेषणों और संज्ञाओं की। इनका भूतकाल रूप बनाने के लिए वाक्य के अंत का देस हटाकर देशता लगाते हैं।
0: ना विशेषणों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संज्ञा से पहले लगाते समय इन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ना होती है, जैसे
5: शिनसेत्सुना
0: यानी भला। जब ये विशेषण वाक्य के अंत में आता है तो इसका रूप होता है
5: शिनसेत्सु देसु। शिनसेत्सु देसु
1: का भूतकाल बनाने के लिए देस हटाएं और देशता लगाएं, तो बन जाएगा
5: शिनसेत्सु देशता।
0: और जब संज्ञा के बाद देस लगा हो, जैसे
5: तानोशी ल्योको देसु
0: यानी मजेदार सफर है, तो उसका भूतकाल रूप होगा
5: तानोशी ल्योको देशिता।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है।
6: 大阪はどうでしたか?良かったです。とても賑やかでした。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
1: ओसाका कैसा रहा?
5: ओसाका
0: पश्चिमी जापान का एक प्रमुख शहर है।
5: दो
0: का मतलब है कैसा और उसके बाद आया है देश्ता, यानी था या रहा। इससे पता चलता है कि प्रश्न अतीत के बारे में है।
1: पुरुष ने उत्तर दिया,
6: योकात्ता देस,
0: अच्छा रहा।
1: याद रखिएगा,
5: योकात्ता
1: ई विशेषण
5: ई
1: का भूतकाल रूप है। पुरुष ने आगे कहा,
6: तोतेमो निगियाका देश्ता,
0: बहुत चहल पहल थी।
5: तोतेमो
1: का अर्थ है बहुत,
5: निगियाका देश्ता
1: है ना विशेषण,
5: निगियाका ना
1: यानी चहल पहल वाला का भूतकाल रूप।
0: तो सुनिए और प्रश्न के बाद आने वाला उत्तर दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्ता का? योकात्ता देस। とてもにぎやかでした。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप यात्रा पर गए थे और सफर बहुत अच्छा था, तो ये बात कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा का जापानी शब्द है ई विशेषण
5: सुबाराशी। सुबाराशी
6: सुबाराशिकात्ता देस।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो हारूजी की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: ओकाएरी नासाई।
5: ओकाएरी नासाई
1: एक अभिवादन है। जब कोई कहीं से लौट कर आता है तो उसका स्वागत इस अभिवादन से करते हैं। इसका अनौपचारिक रूप है
5: ओकाएरी,
1: जिसका इस्तेमाल परिजनों या मित्रों के लिए कर सकते हैं। और इसका बहुत औपचारिक रूप है
5: ओकाएरी नासाइमासे,
1: जो अक्सर होटल कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करते समय बोलते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओकाएरी नासाई, नागानो वा दो देशिता का?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। ये तो आप जानते ही हैं कि मिया नागानो घूमने गई थी। टोक्यो से बुलेट ट्रेन से वहां पहुंचने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। तो आज हम बताएंगे जापान की शिनकानसेन के बारे में।
1: जापान में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की बहुत सारी लाइनें हैं जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। रेलगाड़ियों की बनावट और नाम अलग अलग हैं।
0: शिनकानसेन से मुख्य शहरों के बीच आना जाना बहुत सुविधाजनक है। इसमें बैठकर आप मुख्य शहरों के बीच कम समय में यात्रा कर सकते हैं।
1: जैसे क्योतो, टोक्यो से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक का सफर 2 घंटे से थोड़ा ही लंबा है।
0: रेलगाड़ी में वक्त बिताने के लिए लोग बाहर के दृश्य का आनंद लेते हैं, बेंतो यानी डब्बा बंद लंच खाते हैं, पढ़ते हैं या सो जाते हैं। रेल के डब्बे शांत और साफ सुथरे होते हैं, इसलिए सफर आरामदेह होता है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम खरीदारी करने जाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।